सत्संग में जन अतिशय खप हो सत्संग तो लो कर सत्संग में जन अतिशय खप हो संतनाधीन रहे ने मोक्ष में गुरुजो थे रहे सत्संग जेने अतिशय खप हो संत ने दीन आधीन रहे ने मोक्ष नो गरजो थई रहे पोतानी बुद्धि ने अतिशय तुच्छ जाने बीजा हरि भक्तो ने मोटा माने एने ज प्रगति थाय छे एनी जो एनी ज प्रगति थाय छे काका गुणधर्म सत्संग में जेने अतिशय खप हो सत्संग में जो निष्कुण स्वामी लख्य महाराज ना वक्त में महाराज वक्त में केटलो खप होतो ओटले सूरे घेला कांटे दुकान पर बदे कोई मोटा संतो ने अमुक महाराज ने बदा ने दरबार में दादा कच्छ में दरबार में उतारो मले बीया तो बदे एने खप तो बधु पण तो ते वक्त निष्कुण स्वामी के खोरी खोरी ने खोरी असर रहे खपवारा नहीं खोट रहे तो अपने आता आता रहे शू थाय से बदु पण खपनी बात मारे दे अपने खप हो के ना पण सहजे अपने अभी भक्ति ने क्रिया में बधु थाय छे पण खप एटले जेने जम पैसा नो खप हो तो शू मणस मणस शू ना करे एम मोक्ष नो खप हो तो काम था सत्संग में अतिशय खप हो संत ने दिन आ दिन रहे तने एकांतिक संत ने दिन आ दिन रहे ने मोक्ष नो गरजो थई रहे पैसा नो गरजो थई रहे तमे $5,000 मिलता है महीना ना अने बीजे 6,000 आए तुरंत बदली है नौकरी गमे दूर हो पैसा मोक्ष नो गरजू है पैसा नो गरजू हो बीजा अने पोतानी बुद्धि ने अतिशय तुच्छ जाने બધો ગોટો વરે પોતાની બુદ્ધિને અતિશય તું જાય તો કરવાનું શું શું કાંઈ કરવાનું આપણે કચરાતા રહેવું પડે બધા માથે પગ મૂકીને કેમ જાય આવું થયું એવું નથી પોતાની બુદ્ધિને અતિશય તું જાણે અને એ તો એક વાત થઈ ગઈ પોતાની પોતાની બુદ્ધિને અતિશય તું જાણે પણ બીજી સામે છે બીજા હરિભક્તોને મોટા માને પોતાને તું જાણે તો બરાબર છે પોતાને તું જ માન્યા કરે પણ બીજા

स्मृतिरहो अन्तरमातमारी स्मृतिरहो अन्तरमातमारी। श्री स्वामीनारायण भगवान नी जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज नी जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज नी जय। भगत जी महाराज नी जय। शास्त्री जी महाराज नी।

ऐश्वर्यमुक्तो लयी शोभे अक्षर साथ सुंदर छवि लावण्य तेजोमयी कर्ता दिव्य सदा रहे प्रगट जे साकार सर्वोपरि सहजानंद कृपालु ने नित्य नमो सर्वावतारी हरि। श्री स्वामी नारायण भगवान नी जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज नी जय। गुणातीतानंद।